जो सेवा है तुद जे जान नानक तेन कुरबाना। हर त्याव है तुद जे से जाना जुग में सुख वासे से मुकता पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निरभाव त्याया जी तिन का पाओ

अंता। तेरे भगत तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी।

तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चन चन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ द मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास ने भरिया है। पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तो जू करी हव रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरे चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन कार जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल

हमारा, नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सेवगुन सुख दियो, सत्रन को पलमो बध कियो, घट घट के अंतर की जानता, भले बुरे की पीर पछानता, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानाए, घट घट के पट पट की जानाए, जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जाबा करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलता देह तार सब हो, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते

अनेक कहे मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब है, वह भेद कहे हम एक ना जान्यो, श्री सपान।

वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्तु तजी नह जाई नित नित राख्यो रतारो तम संसार चरण लग तरियै

दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कर।

ओहकार सतगुर प्रसाद गहरी करक नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई जिन तृण धार।

कहु नानक सब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करना निधावै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दारदा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां संग निभाई तिन्हां शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। चित आवे चित आवन काज सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले।

जय। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा।

0: कहत कबीरा सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, पर हो एक की सरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीर्ता खिय करते का होए बिचार, उतत घर गावहो सोहिला। सिवरे हो सृजन हारो तुम गावहो, मेरे निर्भउ का सोहिला। ओवारी जित सोहिला सदा सुख होए राव, नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावहु तेल, देहु सज्जन असी सड़िया, जो होवै साहिब स्यो मेल। कार कारे हो पहुचा सदड़ै नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला, शे कर शे गुर शे उपदेश, गोर गुर एको वे सनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर राख वड़ाई तोए रहाओ। बिस्वे चस्या घड़िया पहरा, थिति वारी महोवा। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के तेवेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में था रब चंद दीप, मने तारिका मंडल जंत मोती, धूप मलान लू पवन चवरो करै। सगल बन राए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तब नैन नैन है तो कौ, सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नान एक पद गंद, बिन सहस तव गंद चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मैं चानन होए। गोर साखी जोत प्रगट होए, जोत तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद, लोभित मनवन दिन मोहिया ही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाहे। कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे, कर डंडाओ पुन वड्डाहे रहाओ। साकत हर रसाद न जानिया, तेने अंतर होमे कंडाहे। ज्यों ज्यों चल है चुबे दुख पावे, जमकाल सहे सिरंडाहे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन मरन पव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बसोब खंड ब्रह्मंडाहे।
1: हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड़ाए जान नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाए राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत हल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सुरैना रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे हो रस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पावहो सुख सहजे बहुर ना होए गुफेरा अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की

है कि धर्मं तुजा है कि आसो कबर न कि सर्वा या पर नय कि जगतं कृति है कि छत्रं छत्री है कि ब्रह्मं स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आद अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कै अधीन है कि रुजी रजा के रही मैं रिहा कै के पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अफूल गुनाह है कि साहा न साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राज करहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र वान है कि सर्वत्र दाने है कि सर्वत्र गावना है कि सर्वत्र पावना है कि सर्वत्र देसा है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र राजा है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीना है कि सर्वत्र लीना है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पहा हो कि सर्वत्र देसा है कि सर्वत्र पेशा है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र तराणा है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य सदा एवं प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र बान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिमय के परमंग फहीमय के अकल लामय के साहिब का लामय के उसरल वजू है तमाम वजू है हमेशा सलामय सलीख तम उदामय अग्निबल शिकास्त है गिरीबल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीज उल तमाम रजू उल निधान है हरीफ उल अजीमय रजाय यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीज उल निवाज है अग्निमल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है पर भुगत प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्व साज है समस्तोल सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदि रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सबंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वीवल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजोगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है परजोगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है लिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छांदत है प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल छांद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न माता न जात न पाता निरसाकं श्रीक है अमित अमीक है सदैव प्रवाह है अजह अजाह भागवती छांदत है प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है के रीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल शिकान है रासुल फिकान है कलंकं प्रणास है समस्तुल लिबास है गंजुल गरीब है रजायक रहीम है समस्तुल जुवा है के साहिब के राह है के सा के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवान है मेसुल लवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेसुल लेख है मेसुल पेख है जमीन उल जमा है अमीक उल मा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचरंग प्रकाश है कह मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है कह मितो विभूत है कह मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचरंग अनंग है कह मितो अभंग है मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर गंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव्य नास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अभंग।

के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हार, सुबातन ही चक चार लवैया, साहेब श्री सब को सिर नायक, जाचिक अनेक सो एक देवैया। दानव देव फनिंदन साचर, भूत भविख पवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक।

0: सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुड़े सची बाणी शांत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बैनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहू नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा अरदास इको अंकार। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाओ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाओ निध आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन के अंडट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिना प्यारियां सचियारियां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तर बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशियारे आए देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे मूंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अंतरजामी अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहेब होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन हजूर चरणा विच अरदास बेनती है सतगुरु जी आप जी ने कृपा बख्शिश रहमत कीती अमृत वेले तख्तां ते प्रकाशमान हो के संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते आप जी दी पावन हजूरी अंदर अमृत वेले दे नित नेम बाणियां दे पाठ होए कृपा करनी बाणी पढ़दियां सेवा निभाउंदियां होईयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी अगे तों समत बख्शनी सिर ते मेहर भरिया हथ रख के ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ੁੱਭ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ,

हूँ, सचेत है क्या चेतना को चार कियो। कत हूँ अचिंत होय क्या सोवते अचेत हो। कत हूँ भिखारी होय क्या मांगत फिरत भीख। कहूँ महादान होय क्या मांग्यो तहन देत हो। कहू महाराज ने को दीन दीजते अनंत दार। कहू महाराज ने ते छीन छेत ले तो हो। कहू वेद रीत कहू तास विपरीत। कहू त्रिगुण अतीत कहू सुरगुण सुमेत हो। तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करहो मोहे। हार परा मैं आन द्वार तोहे। सगल द्वार को छाड़ कर

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोइना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खा कूड़ कूड़े न्यों लगा विसरिया करतार किस नाल कीचा दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यों कूड़ डोबे पू नानक बखाने बेनती तदबाज कूड़ो कूड़ मरला पहला
1: सचता पर जानिए जर दे सच्चा हो कूड़ की मल तेरे तन करे गच्छा तोए सचता पर जानिए जा सच तेरे प्यार नाओ सुन मन रसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के

अचल अविनाशी सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मलनासी सतगुर चरण कमल रित धारण गुर अर्जुन गुण सहज विचारण गुरु रामदास कर क्यों

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साढ़े कभी ख्याल च भी ना दे, गुरु बाबा जी साढ़े जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां, अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जर्वेशन साडे जीवन के प्रति यह है कि जीवन की विध ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो, ताकि यह सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हां फिजिकली, बेशक असी इंटलैक्चुअली भी ग्रो हो गए हां, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हां, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हां, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी वड्डी गल है। और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आता की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हां वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी दे नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नूं एक कदे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी यह सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति यह डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विध ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नूं
ओ रबी नूर, रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखती है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है? आप आसा जी बात सुन दे, मैं आपको फिर सुना देना। फलीए फुलीए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलीए फुलीए बपड़े भी तन विच सुआ, पर अंदर तन दे विच सुआ है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज भी मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी एक दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर कीता होवेगा? ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी दफा यह गल सुनन मिली है, कितनी दफा यह गल ही सुनन मिली है, कितनी दफा किसी ने यह पॉइंट ही रेज किया है या सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू तो भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख कर दिता है, पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत्य। सो आज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ये है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आना, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र सुनो।

प्यारी गल आ गई समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किवें पूरे होंदे हैं, मैनू सुख इस तो किवें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किवें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जब पूरी नहीं होंदिया तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जब मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल

ही राजे, कोई ऐसे राजे जो 300 साल पहले भी तक ते बैठे सन ते आज भी बैठे हैं, कोई राजे जिन्हां उत्ते 300 साल पहले भी शतर चल रहे सन ते आज भी चल रहे हैं, वो राजे हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

करके नितनेम करके सिमरन करके अपना मुख शीशे च वेख ली तेन ओदे विचों ही मेरे दर्शन हो जाएंगे। गज के आखो सतनाम खालसा जी। बाबा दीप सिंह जी जदो ए सुनिया कि ओनू मैं अपना रूप बना देना ते कलगीधर पातशाह कहते दीप सिंह उथे ही आ जा जी पातशाह कोला मांजदा पिया जी महाराज बड़ा रगड़िया कोला बहुत जपदिया जपदिया कीता हां महाराज ते दीप सिंह फिर कोले चो अपना मुख वेख नजर आंदा आखो सतनाम कोले चो तेनू मुख नजर आना शुरू हो गया कहते कोला इन्ना कु लिशकाया सी कि जदों कोला वेखदे ने बाबा दीप सिंह जी ते कोले दे विचों अपना मुख की कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दे दीदारे हो रहे ने गज के आखो सतनाम। प्यारियो जिदी सेवा तो प्रसन्न हो जे उन्हूं अपना रूप बना दे सच्चे पातशाह कृपा करन हाथ जोड़ के बेनती जे एक नाम जपण वाले दा दिहाड़ा आप जी मना रहे हो इथों दे सारे गुरमुख प्यारे जड़े सिख वेलफेयर सोसाइटी वाले बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर एसोसिएशन वाले वाहिगुरु इन्हां सारयां नूं चढ़दी कला बख्शे।